अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: गंदे सॉन्ग
4: यार, पागल है क्या?
3: क्यों
4: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग? ट्रोल,
3: बट व्हाई, इट्स आइकॉनिक।
4: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई।
3: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी।
5: यू गाइस वांट ऑडिशन? या
4: ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: I'm not supposed to take it person.
1: रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
5: 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी ही देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: आज है।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27।
2: दोस्तों 10:04 का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और दोस्तों लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम। दोस्तों बताना चाहूंगा, कुछ संदेश भी आए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, मैं उन सभी का पहले नंबर पे गाना सुनाना चाहूंगा। पहला संदेश हमारे पास आया है मोनिका मीना जी का सवाई माधोपुर से, और दूसरा संदेश हमारे पास आया है इंदरगढ़ लाखेरी से बनवारी लाल मीना जी का, और राम सिंह और पप्पू लाल जी का सुनना चाहा इन्होंने ये गाना।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
1: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: हेलो।
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
4: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
3: अरुण जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से, छोटा गांव है, ग्राम अकबरपुर।
3: बताएं अरुण जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: तो फिल्म का नाम है नाजायश।
3: जी
4: गाने के बोल हैं, जिंदा है तो जी लेने दो, भारी बरसात में पी लेने दो।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप, आपकी।

0: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो, गाना चला दिए
0: जी। आपका नाम बताएं पहले।
1: हमारा नाम मुस्कान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मुस्कान जी?
1: हम गंगापुर से बात कर रहे हैं।
0: कौन सी नजम चलानी है?
1: दुरूद-ए-पाक पढ़ पढ़ कर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।
0: नमस्ते सर, आपको सभी सुनने वाले को बताएं सर, गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: आज गीत सुना, पिक्चर का नाम है सूरज और गीत के बोल है कबूतरी बोले कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से।
0: क्या बात है सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
1: आसाराम जागा सर।
0: आसाराम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
0: बताएं आसाराम जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जब सूरज देखो मोहन की।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश।

0: हेलो हेलो,
1: कौन
0: जी? मैं ऋषि मीना असम रेडियो से, क्या नाम है आपका?
1: मयंक गुजर।
0: मयंक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: यमुना पर सीटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: एक तो ये अपनी
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो हेलो
1: कौन
0: जी? मैं हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: मोनू कुमार मीना।
0: मोनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं मोनू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: साई।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको साई।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है। 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस

0: शहजाद खान पुराने जमाने।
1: बताएं शहजाद जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: उड़े जब जब दिल पर तुम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.

नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

एस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी यानी बारिश का आनंद में सुनेंगे हम ये गाने। करते हैं आपके इंतजार की घड़ी को खत्म और आरंभ करते हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम बताएं सर।
2: मैं आपका भतीजा स्वाई माधोपुर से बोल रहा हूँ, हमें गाना चलवाना है।
3: नाम बताएं आपका।
2: मेरा नाम राज है।
3: राज सवाई माधोपुर से, बताएं कौन सा गाना सुनना है।
2: चुंदरी चुंदरी।
3: बिल्कुल सुना रहे राज जी, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो,
1: ये नाम बताएं सर।
0: ये मेरा नाम है राज सिंह दानिया। मैं
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: कर रहा हूँ दिल्ली से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आप? सुना दीजिए, पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: बिल्कुल
0: पूरा गाना चलाना इनको।
1: ओके सर।

0: हेलो
1: ऋषि जी, सादर नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नमस्ते। नाम बताएं आपका।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश वार्तालाप कर रहे हैं।
0: शारदा प्रसाद जी, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वास्थ्य हूँ और आपका कार्यक्रम सुनता हूँ। मुझे जो राजस्थानी लोकगीत आप सुनाते हैं ड्यूएट, वो बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है सर, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: फिल्म का नाम है जय हो और इसका टाइटल सॉन्ग है जय हो जय हो।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग।
2: Thank you.

0: याद है। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताए सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप आज।
1: फिल्म का नाम है आशा और गाने के बोल है जाने हम सड़क के लोगों से।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर।
2: सीखिए पाधनी सा।

0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
0: सर ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ जटिंडा से।
1: ठंडी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: सर गाने के रोल है जिंदगी का नाम जिंदगी।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: कोमल दुर्गापुर
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: से।
0: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सावन आया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरबी गुजरात।
0: आरबी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: एक सारा सॉन्ग और एक
2: सुनते रहिए दिल से दिल 89.6 GSFM पे। हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं।
1: साबिर बोल रहा हूँ सर, गंगापुर सिटी से।
0: साबिर जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है मैं तेरे प्यार में क्या कहना बना दिल दे।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश का ही गाना।

दोस्तों सांस बजने वाले हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम भजन संध्या। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज।

धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर,

शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: झुमका।
1: पिछले साल की बात है, इसी वक्त मैं मनाली घूम रहा था और रास्ते के किनारे इंडियन आर्मी ने एक बोर्ड लगा रखा था जहाँ लिखा था कि ड्राइव लाइक हेल एंड यू विल बी देयर। इसका ये मतलब है कि गंगापुर सिटी में भी अगर आप तेज गाड़ी चलाते हो तो धीमे धीमे आराम से गाड़ी चलाओ। 9 बज के ऊपर हो चुके और इससे पहले आपने गाना सुना वट झुमका रणवीर सिंह की आवाज में, जोनिता गांधी की आवाज में, अरिजीत सिंह की आवाज में। लिरिक्स लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, कंपोजिशन रिक्रिएशन प्रीतम ने किया। कुछ नहीं और अगले 3 गाने बैक टू बैक एंजॉय करो।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: अच्छा कौवा कैसे बोलता है? बिल्ली कैसे बोलती है? और डॉगी? इससे पहले आपने गाना सुना था तेरे प्यार में फ्रॉम द फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, वोकल्स ये अरिजीत सिंह ने, निकिता गांधी ने, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गाने का लिरिक्स लिखा था और कंपोजिशन प्रीतम ने। लेकिन इस फिल्म के बारे में आपको ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, मैटर नहीं करता, क्योंकि इस वक्त जो मैटर करता है वो है रणबीर कपूर और उनकी फिल्म एनिमल। हाय हाय हाय हाय स्पीचलेस। जब तक मेरी स्पीच वापस आए तब तक आप दो गाने बैक टू बैक सुनो ना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: देखो आप सज धज के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय, क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: जुबिन नौटियाल असीस कौर की आवाज में आपने गाना सुना राता लंबिया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन तनिष बागची भैया ने लिखा है। वैसे हाँ, फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, टाइम टू गो। कल मिलेंगे सुबह 9 से 10, पर आप कहीं मत जाओ, बने रहो हमारे साथ, गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89।

0: शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन में एक गाना जरूर बजता है। आज मेरे यार की शादी है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। जो मैंने आपको गाना बताया वो लिखा गया है वर्मा मलिक साहब का। हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने हमारा दिल आज भी उतना ही खुश करते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फिर मिलूंगी आपसे सफरनामा में 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

में गर्मी ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा, कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना यह भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। आइटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अभी जो आपने गाना सुना वो 1970 में बना यादगार फिल्म का 8 मिनट लंबा गाना था, जो वर्मा मलिक जी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा। उन्होंने भारत के उन लोगों की आवाज उठाई जो कहीं दबी हुई थी। नूतन जी और मनोज कुमार जी पे फिल्माया गया ये गीत, जिससे वर्मा मलिक जी बहुत मशहूर हुए। अब आपकी और सावन भादव फिल्म का गाना कान में झुमका चाल में ठुमका। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो किशोर कुमार साहब और महेंद्र कपूर जी ने गाया है। इसमें फिल्माए गए अभिनेता उलझन में फंसे हुए हैं। उनके पास चाबी तो है पर ताला लगी तिजोरी को वो तलाश रहे हैं। तिजोरी तलाशते हुए वो कहते हैं, माल मिलेगा ज्यादा, तुझको दे देंगे आधा, ये है वादा क्या इरादा। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत जो आज भी बारिश में हम सबकी जुबान पर रहता है, वो गीत आपकी और 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अभी जो आपने गीत सुना वो नागिन फिल्म से था। इसमें फिल्माया गया था जितेंद्र जी और रीना रॉय जी को। सफरनामे का आज का अंतिम गीत आपकी और वर्मा मलिक जी द्वारा लिखा गया। आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ, मैं तनीषा 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन। मेरे प्यार।

0: वाह वाह वाह वाह, बुरे याददाश्त के मामले में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि कुछ दिन कुछ हफ्तों पुरानी बात है जब आप रो रहे थे कि हम वर्ल्ड कप हार गए और अभी देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो। चलो गाने एंजॉय करो। गाना कौन सा एंजॉय किया वैसे आपने? पछताओगे गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में। गाने को लिखा किसने था? जानी ने, और कंपोजिशन भी पराग ने किया। पर अब एंजॉय करो चार गाने बैक टू बैक सिर्फ आपके लिए। कहां? 89.6 रेडियो DSP।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है ओ बेदर्दिया. लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन प्रीतम ने और मुझे भी गाना गाने का मन कर रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. अगर आज आपका बर्थडे तो बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू. लेकिन क्या आपको पता है कि बर्थडे केक का कॉन्सेप्ट कहाँ क्रिएट किया गया था? किसी जर्मनी के बंदे ने पहली बार आज से 200 साल पहले बर्थडे केक काटा था. और दुनिया में हर रोज 15 मिलियन लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी 1.5 करोड़ लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करें. उनमें से अगर आप हो तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. फिलहाल बैक टू बैक 4 गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: उर्जा काली कावा गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में, लिरिक्स लिखा आनंद बख्शी ने और कंपोजिशन उत्तम सिंह के द्वारा, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट और रीअरेंज किया मिथुन ने. सुबह के 9 बज के ऊपर हो चुके हैं भैया और अभी तक दांत खिटखिटा रहे, ठिठुर रहे हो ठंड में. अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो भैया क्या कर रहे हो, ठंड आ चुका है, विंटर्स आ चुके, दौड़ने जाओ, जिम ज्वाइन करो, बैडमिंटन खेलो और फिलहाल गाने सुनो. बैक टू बैक 4 गाने आपके लिए रेडियो DS 89.6 पे.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करने वाले हैं फिल्मकार मुजफ्फर अली जी की, जिन्होंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और कुछ कला फिल्म्स भी उनके खाते में दर्ज है। 1978 की फिल्म गमन के जरिए उन्होंने सिनेमा जगत में कदम रखा। इस फिल्म के संगीतकार थे जयदेव जी। आइए इसी फिल्म के कुछ अनोखे गीत सुनते हैं। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती।